श्रोता मित्रों, आप सामरिया चौकुचार्जी कार्यक्रम गीत माला 102.8 FM उपर या तो www.diversefm.com उपर सामरिये। यस जी, आपनी फरमाइश आने में बधाई पन आनंद मा जासु, कारण के आ छे मानो गर्भो करायो। कीर्तिदान गढ़वी

शांति शांति शांति शांति श्रोता मित्रों, आप सुन रहे हैं चौक जाति कार्यक्रम गीतमाला 102.8 एफएम पर या तो www.divasfm.com पर। छेले अंते आवी गयो साचो जवाब, ईश्वरनु लईने नाम सौ, ईश्वरनु नाम लईने सौ करे पण गुंडाओ पण मने खाता। साची वात छे राठोड साहेब, सम हा कसम, सम के कसम गयो बराबर छे, साचो जवाब हतो। आप सांभळी आचो गीत मारा 102.8 एफएम उपर या तो www.divasfm.com उपर। समय पण जातो जाय छे ने गीतो पण बे चार बाकी छे, पण कोशिश करिए।